साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: जेब बंगश नंदिनी श्रीकर ऑन द वोकल्स, होने दो बतियां, टेकन फ्रॉम द फिल्म फितूर, अभिषेक कपूर की फिल्म, द सेम गाय हू मेड केदारनाथ. Idris in Hackney is asking me, Shabnam ji, who do you think is going to win tomorrow between France and Morocco? Well, given my expertise on the beautiful game, I shall have to do eeny, meeny, miny, Morocco.
1: Listener's Choice, brought to you by Utsav Plus.
2: I love you, Dr. Noini.
3: Ye tumhara bachpana hai, pyar nahi. Umre dekhi tum dekhi. Hamare beech kabhi kuch nahi ho sakta.
4: Tab tak logo ki parwah karti rahoge.
0: Watch Set Up, a heartfelt musical romance, every day at 6 p.m. only on Utsav Plus. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Taken from Chand Mera Dil, the Neeti Mohan version. Ishq Nibhavan De. गले से तेनु आज लगावन दे, सजन मैनू इश्क निभावन दे. जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, हाउ आर यू स्टेइंग कूल, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा.

सादिन आएगी तो लाइफ बन जाएगी. दैट इज ऑफ सोनू निगम एंड जसपिंदर द रूलर फ्रॉम द फिल्म हमराज. शाबाश इफ यू गॉट इट राइट. बीट द इंट्रो, आवर क्लासिक वर्जन इज ऑन द वे. यू गेट इट राइट, द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट राइट एंड यू विल बी नोन एज परफेक्ट. परफेक्ट. Absolutely perfect.